ngala tar phagyamse rangni de namin dana thoje simula tigde bima rangni se chuge tangda tangbu mula biba ngamche thayang bu mula oche rangni se ngamda maya lashyu bagamnu ngamche thada bu mula shrota pakkan parmeshwar la bachan nyamba banda gen damja argu tikan ta kham ओचे हो जब बचन यंची यंग जीवनी यंग परिवारी यंगा खिमजरी चुताम यंग से लोक पजा सब जम्मून बंदा घृणता मिन्ना श्रोता रंग से पुखर सुबा जम्मून साला सुजाव लागरीन यानी लानन थोजे सिमुला यानी लानन आवारी मुला तीर बीमा रंगी लहोज पत्र दुग यंग से नंब लानन उत्साह यंग बमुला श्रोता होजुन पनि सोला अनुग्रह ग्याम्से जे तिमी यांगसे जो बचन न्यान न्यान बमुला उचे पनि सोला बचन ग्याम्से लोक न्यान बमुला होजु दासी पनि सोला जो बचन दा न्यान सेम्बे थान्दे श्रोता तिमी ला बचन ने विषय रे निबरी जन्मिता या तस्यु बमुला हिनु पकन श्रोता जन्मिता सासिन बला लागरी पनि सोला बचन ने विषय बसी खाबुमुला नाद विश्वास मुला तापिन तिनी हुन रानी से समय तेसी परमेश्वर ला पचन सानबरी तयार तशुभ मुला विषय श्रोता तिनी ला विषय हिन्ना परमेश्वर ला पचन यंसी ध्यान सार ला गेलाऊ श्रोता तिनी यं चासे द मुला याकूब ला किताब यंसे परमेश्वर ला पचन सार कोविल यंसे याकूब ला किताब एक अध्याय ला 19 पद हिंसे 27 पद दोना चासे द मुला छुरी छोरमले ब्रिगमुला ठेतासी सेन्निबा नला जुजुआले नानाङ दुगु यनि दुगुसे रङ्गताम पाङबा बन्दङ्गछा जनाला सिङ्यानगु ओछि योन बोम थागौ दिगताम एनिगदे जम्मासेनको तिग्द बिमा मिला बोमसे पन्न सोसे मनबान्सारलाई के खाइमै लबरी आखाम ठेतासी ठेरङ्बा जम्मन अजेबानी बेहोर्दा नाइबताम खागो ओछे पन्नु सोर से एनि दुगुला सेम रिथाम्बा बचन्दा सोजतासी सदन घोषिद्रौ चुनुन बचन रिन एनि दुगुदा थार्न लब शक्ति मुला एनि दुगुसे चु बचन न्यान बजे आहिन बचन अन्सारला गेरुन लौ तर बचन न्यान्सी रङ्से रङ्से रङ्गन थोका थाबिनगो खलै निसे बचन जा न्यान्जी तर बचन अनुसार गे आलनी विषम थिमी जा ऐनरी ली च्याबा निरङ्गन हिन्ना ठेसे ऐना च्याबे दोना ली चुरङ बमुल विषे थायङ मुला तर ऐन च्यासी निमे हिन्से ठेसे रङ खरङ बमुल विवताम तुरुन्तन ने मुला तर जुन निसे थार्मलाबा पढ्ने सोला थिमानसार सेमलसी न्यान्सी ब्राला ठेसे परमेश्वरला वचन आमले न के लला ठेरङ बिरा रङसे लबा चन्दन गेरे परमेश्वर से मुलम पिन्ना यदि खनैसे रङसे रङदन न परमेश्वर द तेम्ब मिहिन्न बिसे बिला तर ठेला सुन्ज तहारे आथनी बिसम ठेसे रङसे रङदन थोका पिन्द हिन्ना ठेतासी ठेसे परमेश्वर द तेम्ब तान तिगै गे आखेल बताला परमेश्वर द सेन्नी व चोखो दिन सत्य तेन बताम चा दुखरी परताबा लिम्बुसी व मिंगुल दुगुद रोलाबा तुहुरा कोल दुगुद सायर लब हिन्ना ओछे जंबुलिंगला जंबुन आज बताम गदे खाब हिन्ना यदि खलैसे रंसे रंगन न परमेश्वर ला बचन तेन बुमी हिन्ना बिसी बिला बिसम थेल सुन्जा तहारे आथनी बिसी बिसम थेसे रंसे रंगन थोका पिन बिन्ना ठेतासी थेसे परमेश्वर दा तेनबा तिगे गे आखेल बताला परमेश्वर दा सेव विवा चोखो दिन सत्य तेन बतामजा दुखरी परब तबा दुखरी परब तबा ओछे हरम बा गे लब मिदगु सेजे हिन्ना श्रोता यंग से गोदो बतामजा यंग विश्वासी परिवारी गर सुबचन अनुसार जीवन पुरो बतामुला तिमीलाई वचन ग्याम्से यङसे गोखामला होजुताम यङसे नानिम पदक परमेश्वरलाई वचन ग्याम्से गोमुला यङसे थेमुला जमनी नि थेबरी छिटो तदोबा
उच्चे तंपं बरी कई बता दो बा उच्चे भूमला बरी ठी माता दो भी बताम ठी द बीमा भूमसे जवानम ला थेतसी यदि यंग से परमेश्वर ने बचन यन्ना तर हो जा बचन अनुसार लगे आतनी विषम थेजे रंग से रंगन थोका बीन बहिना बिवतम पंग बुमला सुजा गुरकेक अन्य चाव मिशे लिचन ने वरंग बतम हिना तर यंग जा स्वतंत्र पिंब परमेश्वर ने बचन सेने थांची थे रंगबा जीवन पुईजी विषम परमेश्वर से यंग दा नानन मोलम पिंशुषे दमुला अवश्य श्वता यंग से परमेश्वर ल बचन यंग बजे आहिन तर यंग ल गेरी लसिवन बजा क्रेंताम हिन्ना किन्ह ल बचन गेम्सी यंग से गोबा यंग से लोपा शिक्षा जा चुनिन्ना चु बचन गेम परमेश्वर से यंग जन्मदन आशीष पिंगई

0: रोगादे रंगसे दन्दे बर्खर यान्स्युबन मोला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे चिनिला चु गेदाङ रंगनिदा खरङबा नम्जी तुदे चु गेदाङ यान्छी रंगनिदा तिकै खुल्दुली ताबा मुसम रंगनिला पत्रला नन्छे आस्ल सिसी बमुला रंगनिला सल्ला कुइखला कुइखा स्युला विवाह रंगनिदा आनन्द जन्ममुला तुदे रंगनिला प्रार्थना लदब विषय दुगो मुला विषम रंगनिसी कुइखा स्युगु विवाह मनमा जन्ममुला रंगनिदा मन्ना सु गेदाङला ठेगाना चुरङ मोला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नम्बर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौँ नेपाल इमेल आईडी टी

0: कहाँ लागो तिमीहरू? अनि रमिला के भयो, किन राख्यो तिमी? के भयो के भयो के भयो?
1: मम्मी सबै बहिनीलाई मेरो पैसा सुन्दा
0: अनि त
1: मलाई कसैसँग माफी माग्नु

0: सुनता मेरे कपड़ा पैकिंग कर दूं तो स्वामजी को मिसेस लाई कैंसर उपचार कराऊं ना इंडिया संगे लिए रजानी पड़ेगी वो
1: ए हुरा अन्य सुनता अब कैंसर को उपचार सेम से कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं होता नहीं नेपाल में पहले पटक अत्याधुनिक वेरिएंट ट्यूबिंग बॉय को 60 काउंस र हाइपर आर्क लगाए का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में रहने को ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कॉलेज संबंधी कैंसर पाठे घर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम बाट पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पताल के सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकार बाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ित का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ
0: यस्तो सुविधा रहेछ म अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु क्यान्सर विरुद्ध अनुसारको किरण सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट
2: फोन 056-494-3333 493-555

0: check. Sony FM, the studio time.
1: It's 9 p.m. Ratko Novadu. I'm Cheku Satna, New Star Digital Color Lab, Tata Dwaramai Offset Press, Sony Dukumadagar Palika Path, Sony Kumbu.
2: श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ टीडब्ल्यूआर नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्।

0: check. City FM, the studio time.
1: 10 p.m. रात को 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्तु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु.